आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जते श्याम।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: सारा ओ बागत को सनकाना सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।
1: आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

ಗೆಂತದ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में बांसुरी वादन, कलाकार देव कुमार डे. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजीव रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव में बांसुरी वादन, कलाकार देव कुमार डे.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen to a flute recital in Rag Nat Bhairab. Our artist this morning, Deb Kumar De. Accompanying on the tabla, Sanjeev Roy. Now, listen to a flute recital in Rag Nat Bhairab. Our artist this morning, Deb Kumar De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में बांसुरी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देव कुमार डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजीव रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुनकेली में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं जयंत पांडे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुनकेली में ख्याल गायन, कलाकार जयंत पांडे।
1: You were listening to a flute recital in Ragnat Bhairab. Our artist was Dev Kumar De, accompanying on the tabla Sanjeev Roy. This is Ragam, 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, now listen to a khayal in Rag Gunkeli. Our next artist, Jayanta Pandey, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. Now, listen to a khayal in Raag Gunkeli by your artist Jayanta Pandey.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुनकेली में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे जयंत पांडे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a khayal in Raag Gunkeli by our artist Jayanta Pandey, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है पंडित विनायक राव पटवर्धन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग लत पंचम। सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मुरलिया गोपाल, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है साथो यह जगम। सात संगत सारंगी मधुकर खाडिलकर और तबला चंद्रकांत कामत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित विनायक राव पटवर्धन द्वारा प्रस्तुत राग ललत पंचम। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं तबला वादन। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं विनायक फाटक द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल मत्त ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रसन्न राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल मत्त ताल, कलाकार विनायक फाटक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है.

0: तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खाने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कसलीवाल। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। यू विल फर्स्ट लिसन टू राग नट भैरव, इन विच यू विल हियर आलाप, जोड़ एंड झाला, फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव। सुनीरा कासलीवाल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग इन विच यू विल हियर द आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित राम नारायण के सारंगी वादन से. आपने प्रस्तुत किया है राग मारू बिहाग. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल निबद्ध है. सुनते हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मारू बिहाग.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था मारू बिहाग। मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन रागेश्री। विलंबित गत जप ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन राग रागेश्री।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया हुआ राग रागेश्वरी। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल भारतीय संगीत, हर पल हर समय

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खमाज और माज खमाज ठुमरी और पीलू दादरा. आज के कलाकार हैं सांता कुंडू. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं चित्तरंजन दलोई. शांता कुंडू अपने गायन का आरंभ एक खमास ठुमरी से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं ये खमास ठुमरी. कलाकार शांता कुंडू.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थे शांता कुंडू। शांता कुंडू अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं माझ खमास ठुमरी। तो आइए सुनते हैं ये माझ खमास ठुमरी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी ये माज खमाज ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थे शांता कुंडू। शांता कुंडू अपने गायन के समापन अंश में प्रस्तुत करने जा रहे हैं पीलू दादरा। तो ये सुनते हैं ये पीलू दादरा, कलाकार शांता कुंडू।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे शांता कुंडू। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दुलुई। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्री में सितार वादन। आज के कलाकार हैं शिवशंकर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो मल्लिक। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री में सितार वादन, कलाकार शिवशंकर मुखोपाध्याय।
1: You are listening to Thumri and Dadra in Raag Khamaaj, Maaj Khamaaj and Pilu by our artist this evening, Shanta Kundu. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar and on the harmonium, Chittaranjan Dalui. Continuing the concert, now listen to a sitar recital in Raag Rageshri. Our artist this evening, Shiv Shankar Mukherjee. Accompanying on the tabla, Partha Mallik. Now, listen to a sitar recital in Raag Rageshri by your artist Shivshankar Mukherjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिवशंकर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पार्थो मल्लिक। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a sitar recital in Rag Rageshri by our artist Shiv Shankar Mukherjee, accompanying on the tabla Partha Mallik. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

Dani sa

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां। राग है नट भैरव, जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुत गत, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला।

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वागता मुखर्जी का शास्त्रीय गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग जोगिया. विलंबित तीन ताल के बोल हैं भजले गुरु का नाम मनवा. तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी.

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग जोगिया। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग छायानट। विलंबित एक ताल के बोल हैं एरी अब गुथला और द्रुत तीन ताल के बोल हैं प्यारी लगली लाडली।

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी का गाया राग छायानट। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग देश। झप ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, देखो री न माने श्याम। तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग देश। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाल मनाए, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सगाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहिया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहिया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Swami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

லேகையுள்டேத உபநூலோ லேகையுள்டே.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत, यह है रागम DTH चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत, और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।